सुबह सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाती, यह हमारे भीतर नई ऊर्जा भी जगाती है। आज किसी से प्रेम से बात कीजिए, किसी की मदद कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए और मन में विश्वास जरूर रखिए।

और इस समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹിയിലെ.
1: നമസ്കാർ, ആകാശവാണി സേ സമാചാർ പ്രഭാത് കെ സാത്ത് മേ മുകേഷ് കുമാർ ബൽ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान. गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया. भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा. जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया. अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए. और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों

0: और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाय के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है।

0: एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का

0: ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोक सत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries of the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदानगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
3: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी,
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
3: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
3: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
3: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
3: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी।
3: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
3: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी।
3: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
3: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजी जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
3: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुटकुट करता रहा।
2: जी।
3: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
2: जी।
3: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
2: जी।
3: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
3: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और

0: इच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
1: जी
0: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
1: जी
0: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
1: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
1: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा, जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि एक कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
1: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,
1: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
0: आप हैं।
1: बिल्कुल,
0: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी। श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
1: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी,
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: आहा, नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
2: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी,

0: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
1: हाँ,
2: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
3: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
1: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
2: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
3: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: जैसे?
3: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
1: बताओ बताओ।
3: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
1: ठीक
3: है। बताओ।
2: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
3: और
0: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
3: हाँ, बहुत अच्छे।
1: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
2: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
3: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
1: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
4: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
1: अरे वाह।
3: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना, बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
4: जल।
1: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
3: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
1: तो,
3: चलिए
1: शुरू हो जाओ।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
1: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो, अब तुम्हारी बारी है।
4: जीवन सुखद बनाएंगे।
3: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मुहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मुहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मुहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।

0: क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो?
1: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
0: क्या मतलब?
2: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
1: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
0: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
1: आज तीसरा फाका है। शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
0: या खुदा,
1: नौश फरमाइए मियां,
0: लाइए
1: खाइए।
3: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
2: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
4: लिख दिया।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाएं।
5: इरशाद इरशाद इरशाद ग्रामी।
1: है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह क्या बात है। है मश्क सुखन जारी,
1: चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह
1: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
4: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या बात क्या बात।
2: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
4: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
6: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
4: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
1: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं।
6: मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
1: माफ कीजिए मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। हाँ? नहीं दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
4: क्या
1: जी, एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
6: अरे मान साहब,
1: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशार सुनाए सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाएं।
4: आप भी मानी साहब। लेकिन मानी साहब नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
1: नहीं नहीं, नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
6: मानी साहब खामखा खर्च कैसा?
1: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
4: मोहानी साहब आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
2: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
4: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
1: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
4: आपने तो कुछ खाया ही नहीं।
1: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया।

0: वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही?
1: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
0: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
1: जी और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शब्बा खैर।
0: शब्बा खैर।
1: बला की ठंड है
0: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
2: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा, इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे, उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
0: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
2: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: ഇപ്പോൾ കേട്ടത് സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടി ഉമംഗ്. ആകാശവാണി, സമയം 3 മണി. മീഡിയം വേവിലെ പ്രക്ഷേപണം സമാപിക്കുകയാണ്. മീഡിയം വേവിലെ അടുത്ത പ്രക്ഷേപണം വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ന്യൂസ് ഓൺ എയർ ആപ്പിലും പ്രസാർ ഭാരതി DTH സർവീസിലും പ്രക്ഷേപണം തുടരുന്നു.

0: बच्चों के लिए डार्विन आदि।
1: जी
0: पाठ भाग सुनिए। आज से करीब 400 साल पहले की बात है। पूर्णमासी की एक रात थी। 12 साल का एक लड़का चांद को देखते हुए एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उसे लगा कि चांद भी उसके साथ साथ चढ़ रहा है। उसे बड़ा मजा आया। कुछ देर बाद वो चांद देखते हुए उतरने लगा। अब उसे लगा जैसे चांद भी उसके साथ साथ उतर रहा है। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चांद अपनी जगह पर स्थिर है और मेरी नजरें की धोखा खा रही है। लेकिन वो बिना सबूत के कुछ नहीं स्वीकारता था। उसने अपने दोस्त को बुलाया और उसे पहाड़ी पर चढ़ने को कहा और खुद उतरने लगा। उसके दोस्त ने कहा, चांद तो मेरे साथ साथ चढ़ रहा था, जबकि लड़के को लग रहा था कि चांद उसके साथ उतर रहा था। उसने नतीजा निकाला कि चांद स्थिर है और उसका चढ़ना उतरना हमारी नजरों का धोखा है। उस लड़के का नाम गैलीलियो था और यह घटना इटली में घटी थी। पाठ भाग जिसा पढ़िए।
1: आज से करीब 400 साल पहले की बात है। पूर्णमासी की एक रात थी। 12 साल का एक लड़का चांद को देखते हुए एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उसे लगा कि चांद भी उसके साथ साथ चढ़ रहा है। उसे बड़ा मजा आया। कुछ देर बाद वह चांद देखते हुए उतरने लगा। अब उसे लगा जैसे चांद भी उसके साथ साथ उतर रहा है। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चांद अपनी जगह पर स्थिर है और मेरी नजरें ही धोखा खा रही है।
0: शेष भाग अद्रिया पढ़िए।
2: लेकिन वह बिना सबूत के कुछ नहीं स्वीकारता था। उसने अपने दोस्त को बुलाया और उसे पहाड़ी पर चढ़ने को कहा और खुद उतरने लगा। उसके दोस्त ने कहा, चांद तो मेरे साथ साथ चढ़ रहा था, जबकि लड़के को लग रहा था कि चांद उसके साथ उतर रहा था। उसने नतीजा निकाला कि चांद स्थिर है, उसका चढ़ना उतरना हमारी नजरों का धोखा है। उस लड़के का नाम गैलीलियो था और यह घटना इटली में घटी थी।
0: अच्छा, आज से करीब 400 साल पहले की बात है। आज से करीब, करीब माने अबाउट, एकदेशम। 400 साल माने 400 साल, 400 years। कितने साल पहले की बात है? करीब 400 साल पहले की
2: बात है।
0: पूर्णमासी की एक रात थी। पूर्णमासी की रात माने पौर्णमी, रात्रि माने वेलुत्त वाव रात्रि। കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വെളുത്ത ഭാവ സുനാ ഹെ
1: ഹാ ജി
0: 400 സാൽ പെഹ്ലെ പൂർണമാസി കി ഏക രാത് തി 12 സാൽ കാ ഏക ലഡ്ക ചാന്ദ് കോ ദേഖ്തേ ഹുയേ ഏക പഹാഡി പർ ചഡ് രഹാ താ 12 സാൽ കാ 12 സാൽ കാ മാനേ
2: 12 ഇയേഴ്സ്
0: 12 സാൽ കേ ഉമ്ര കാ ഏക ഛോട്ടാ സാ ലഡ്ക ചാന്ദ് കോ ദേഖ്തേ ഹുയേ ചാന്ദ് മാനേ
1: मून
0: चंद्र को देखते हुए एक पहाड़ी पहाड़ी पर पहाड़ी माने
2: माउंटेन
0: पर्वत पर चढ़ रहा था। चढ़ना माने अर्थ क्या है?
2: टू क्लाइम।
0: 12 साल का छोटा सा लड़का चांद को देखते हुए पर्वत पर चढ़ रहा था। 12 साल का लड़का कहाँ चढ़ रहा था?
1: पहाड़ी पर चढ़ रहा था।
0: लड़का किसको देखते हुए पहाड़ी पर जा रहा था?
2: चांद को देखते हुए पहाड़ी पर जा रहा था।
0: चांद को देखते हुए पहाड़ी पर जा रहा था। लड़के को क्या लगा उस समय?
1: चांद भी उसके साथ साथ चढ़ रहा है।
0: चांद भी उसके साथ साथ चढ़ रहा है। हमको भी ऐसा लगता है ना?
1: हाँ जी।
0: उसे बड़ा मजा आया। क्या देखकर उसे बड़ा मजा आया?
2: चांद उसके साथ साथ
1: चढ़ रहा।
0: ये दृश्य देखकर उसको बड़ी खुशी आई। कुछ समय बाद वो चांद देखते हुए उतरने लगा। कुछ देर बाद उसने क्या किया? चांद को देखते हुए
1: उतरने लगा।
0: अब उसे लगा कि चांद भी उसके साथ उतर रहा था। चंद्रनम अवनोडप्पम ताळेक्कु इरंगि वरुन्नत पोले अवन तोन्नि। देखिए ये दोनों वाक्य ध्यान से सुनिए। पहला वाक्य, कुछ देर बाद चांद को देखते हुए वह उतरने लगा। अल्प समयत्तिनु शेषम चंद्रने नोक्किकोंड अवन इरंगान तुडंगि, उतरने लगा। और दूसरा वाक्य, उसे ऐसा लगा कि चांद भी उसके साथ चढ़ रहा था। चंद्रनम अवनोडप्पम कायरिकोंडिरिक्कुकयाणेन्न अवन

0: इस पाठभाग का नाम ही गैलीलियो है ना
1: जी।
0: उसका लेखक कौन है? श्री
2: शुक्राचार्य।
0: उसका असली नाम क्या था?
2: कृष्ण मेनन।
0: कृष्ण मेनन। अच्छा, यह पाठभाग किस शैली में लिखा है?
2: लेख शैली में।
0: लेख शैली में लिखा है। और वो छोटा लड़का कितने आयु का था?
1: 12 साल।
0: अच्छा, 12 साल का था। लड़का किसको देखते हुए पहाड़ी पर जा रहा था?
2: चांद को देखते हुए
0: पहाड़ी पर जाते समय उसको क्या लगा?
2: चांद भी उसके साथ चढ़ रहा था।
1: चढ़ रहा है।
0: चांद भी उसके साथ साथ चढ़ रहा है। उस लड़के का क्या नाम था?
2: गैलीलियो।
0: और ये खड़ना कहाँ खड़ी थी?
2: इटली में
0: खड़ी थी। कुछ शंका है?
2: नहीं जी।
0: अच्छा, आज का पाठ भाग यहाँ समाप्त होता है।
1: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद।
3: ഹിന്ദി പാഠമാണ് കേട്ടത്. പഠിപ്പിച്ചത് ജയ എൻ, പഠിച്ചത് ജിസ എസ് അജി, അദ്രിക നായർ.

0: ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ ഇനി 10:30 കേൾക്കാം. ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44:52. 8:45 സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध. प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया. 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की. गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की. और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है. इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन.
2: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है. इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है. साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे. इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था. अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था. हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया.
1: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की. उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है. बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे. गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया. इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी. श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
3: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे

0: दिया, कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
1: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
5: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
1: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
4: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
3: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
4: साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए। साथियों, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाकर के खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है।
3: Earlier today, Prime Minister interacted with Chief Executive Officer

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,541, निफ्टी एड्स 20 पॉइंट्स। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स राइज बाय 9.9 बिलियन यूएस डॉलर्स इन द वीक एंडिंग अगस्त 14 एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 77,541 पर पहुंचा जबकि निफ्टी में तेजी आई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह 9.90 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए लगभग सपाट बंद हुए. सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.10% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% का उछाल देखा गया. बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण बाजार पर दबाव भी बना रहा.
0: Benchmark domestic equity indices ended flat with a positive bias today. Sensex added 3 points to close at 77,541. Nifty rose by 20 points to settle at 24,252. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index gained 0.10%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Despite opening on a positive note in the morning, markets witnessed range-bound trading throughout the day due to geopolitical uncertainties, elevated global bond yields and high crude oil prices.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 कंपनियों के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए. प्रमुख कमजोर शेयरों में ट्रेंट और मारुति में 1.51% से अधिक की गिरावट आई, जबकि इंडिगो 1.35% और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 1.2% की गिरावट देखी गई. वहीं तेजी वाले शेयरों में पावर ग्रिड 2.66%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.17% और कोटक महिंद्रा बैंक 1.08% में लाभ देखा गया.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors registered gains. The top gainers were insurance that rose by 0.94%, utilities as well as mid-small private banks, a quality tilt around 0.7%, mid-small private banks added 0.65%. Among the laggards, FMCG and auto shed 0.68%. Housing finance fell by 0.61%, while hospitals lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,240 companies advanced, 2,093 companies declined, and shares of 231 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ. एकेबी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: मार्केट में आज लगातार दूसरे दिन एक सकारात्मक रुख देखा गया. इससे क्या ये मानकर चलना चाहिए कि सीमित दायरे में कारोबार किया जा रहा है या फिर बाजार में कहीं कोई तेजी आने की संभावना नजर आ रही है?
2: देखिए, सीमित दायरे में काम किया जा रहा है. जो धंधा लोग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं, सीमित दौर से काम कर रहे हैं. जो दो तीन जो ट्रेंड जो है वो अभी भी मार्केट के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है. पहली बात तो यह है कि जो विश्व की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें की जो अनिश्चयता. दूसरी कारण यह है कि जो बाजार में, विश्व के बाजार में जो जो बॉन्ड मार्केट में जो थोड़ा खलबली तो नहीं कहूँगा मैं, पर उसके यील्ड में जो उसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, कॉस्ट ऑफ मनी में जो जो चढ़ाव हो रहा है, जो जो दाम बढ़े हैं वो है. और तीसरा जो है आपका जो क्रूड ऑयल का जो दाम जो है उसका आउटलुक. अभी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, पर द लेटेस्ट जो जो ट्रंप साहब का जो ऐलान है कि वो एक इकोनॉमिक वॉर ईरान के ऊपर छेड़ेंगे, उससे क्रूड ऑयल मार्केट में उसका एक प्रभाव दिख रहा है. और ये तीनों चीज, जो वैश्विक अनिश्चयता और जो बॉन्ड यील्ड में चढ़ाव और तीसरा आपका जो क्रूड ऑयल के दाम और यूएस की इकोनॉमिक सैंक्शंस को, इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, एक न्यू डीडीए फॉर द इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, उससे काफ़ी मार्केट में और उसी का एक थोड़ा बहुत प्रतिफलन हमें डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है, और जो कल जो मार्केट में जो हमने जो करीबन 0.8 और 0.9% वृद्धि देखी है हमने सेंसेक्स में कल, उसका कारण भी ये था कि उनके पिछले 7 दिनों में काफ़ी नीचे था, वो जरा रिकवरी होकर स्टेबिलाइज किया है। पर अगर आप पूरी तरह से अगर 6 महीने की देखें, अगर वॉर से देखें, तो मैं समझता हूँ कि भारत की जो स्टॉक मार्केट में है वो उसी जगह अटकी हुई है जहाँ वो उस समय थी।
0: AKB, do you think that Trump's announcement of this initiative of isolating Iran, the economic D-Day as he calls it, is triggering how the global markets are behaving, including the Sensex and Nifty right now? Because fundamentally, the first quarterly results for the new financial year has been quite positive on the net profit side, on the revenue side. Even margins for companies have improved. Do you think, even from the point of view of the PMI index for services and manufacturing, are well above 50, even if it's below month on month, do you think that it's because of this trigger of Trump that is creating that kind of sentiment in the market where FIIs and FPIs have been net sellers, but DIIs are not quite buying into the market as they were earlier?
2: There are two things that we must bear in mind in this context. Number one is that the disconnect between the macro economy, even the sectoral economy in India, and how the stock market is behaving, that disconnect is now complete. Today, if you are looking at the macro economy, looking at the sectoral economy, you see a story of relative calm, growth. As you also pointed out, the corporate sector sales as well as profit has been very good in Q1. The economy is expected to rise not less than 7% for the full year. This is in spite of the early war. So economy is doing well, but the markets remain where they are. So the disconnect between the macro economy and the market is complete in today's context. Why is this disconnect complete? That is because that the Indian market has not gone down to the extent that it becomes cheap for the foreign investors to come in large hordes. And that is because what we have seen in the Indian market is that a large number of retail investors, large number of institutional investors, because of the national payment systems, national pension system, or the EPFO, they are allocating more money to the equity market. So therefore, what you are seeing is this, that our stock markets are still very expensive for the foreign investors to get attracted to the Indian market. So therefore, what we are seeing is that on the one hand, the macroeconomy is doing reasonably well, but the stock market is not reflecting that buoyancy as yet. Now, what will happen because of Mr. Trump's announcements is a larger, broader question of whether

0: देखना है कि जो जो शुगर की जो एक डिमांड जो है वो एथेनॉल की सेक्टर को करीबन 2.4 मिलियन टन को एथेनॉल को जाती है, तो वो उससे भी ये प्रेशर बढ़ गया है। और क्योंकि इंपोर्ट का निर्णय लिया गया है, जो शुगर स्टॉक्स जो हैं, अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में शुगर स्टॉक्स में भी काफ़ी एक एडवर्स इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जो शुगर कंपनियां जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी आएगी इम्पोर्ट आने से, उनके दाम घट जाएंगे। तो ये एक सार्वजनिक दृष्टिकोण है, पर मैं समझता हूँ कि शुगर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी एक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत एक महत्वपूर्ण सेक्टर है
1: जी।
2: In more news, the unincorporated establishments in the non-agriculture sector continued their growth momentum in the first quarter of this financial year. Despite global uncertainty, the sector grew by 9.2% year-on-year for the April to June quarter, according to the quarterly bulletin of unincorporated sector enterprises released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today. The estimated number of establishments increases 8.67 crore in this period. Employment in the unincorporated non-agricultural sector reached 13.7 crore, with the other services sector emerging as a key driver, recording employment growth of more than 21%. This is followed by the manufacturing sector, which registered growth of 10.06% in the estimated number of establishments and 6.6% in the estimated workforce. However, the unincorporated trade sector recorded a year-on-year decline of 7.88% in the estimated number of establishments and 7.29% in the estimated workforce. So your comments briefly on this, the unincorporated sector enterprises, the quarterly bulletin that's come out.
0: Well, I think the unincorporated sector is a very important sector. They represent the largest segment of the Indian industry. But I think it's important to note that the urban sector has done better than the rural sector in jobs. And there is a welcome trend that we see of how women employment in these unincorporated sector has seen a significant rise. So both these developments, to my mind, are significant.
2: In more news, the Income Tax Department has said that over 6.5 crore income tax returns have already been filed for the assessment year 2026-27. It includes more than 2 crore ITRs 3 and 4 till yesterday. The department has urged taxpayers to avoid the last-minute rush, as the last day to file ITR 3, 4, 5 and 7 is before the 31st of this month.
1: सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए दामों में स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य दिलाना है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।
2: In more news, from the crude oil market, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.67% up at $94.41 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.48% higher at $87.25 per barrel when reports last came in. How concerned are you, AKB? Because even the Urals oil, which comes from Russia, is trading at $89 per barrel, because what's happening between Russia and Ukraine in that war. And now you have the threat of economic D-Day on Iran by the US president. How concerned are we about global inflation here?
0: It is a cause for concern. If the situation persists, it will definitely mean a bigger burden on India's crude oil import costs. And domestic oil companies, which have reasonably weathered the first few months of impact of the West Asian war reasonably well, I would say, along with the government support of reducing the taxes and all that, if this remains at this level for some more time, it will be a cause for concern, prompting the government and the oil companies to take some more steps by which the bottom lines and protection is taken.
1: और आगे बढ़ते हैं. भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 2.25% के उछाल के साथ 1,60,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. इस बीच चांदी 3.72% ऊपर चढ़कर 2,46,630 रुपए प्रति किलोग्राम थी. एक भी हमने अभी देखा कि पिछले 2-3 दिनों में सोना और चांदी दोनों में उछाल देखने को मिल रहा है. इसके पहले एक दायरे के बाद से थोड़ी सी गिरावट भी देखी जा रही थी. इस पर आपके क्या विचार हैं?
0: देखिए, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है. अगले हफ्ते राखी है. राखी के सामने उसके बाद फेस्टिवल सीजन का आना होता है. मैं समझता हूँ कि अब गोल्ड की डिमांड भी बढ़ेगी और उसके दामों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि होगी और उसी का एक आभास इशारा कर रहा है कि गोल्ड के दामों में और भी वृद्धि आने वाली है.
1: एके भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settled at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। दोस्तों, आपका पसंदीदा गीत मेरे मन मीत लेकर एक बार फिर स्टूडियो से साथ हूं मैं रोहिणी। कहते हैं मन की बातें गीतों के अंदाज में बयां हूं तो दिल को और भी गहराई से छू जाती हैं। आज का गीत मेरे मन मीत कुछ इसी अंदाज में सजा है और कुछ यही अंदाज बयां कर रहा है। बड़े प्यारे अल्फाज हैं कि नजरों की बातें नजरों से कहां होती हैं, ये तो दिल से दिल की राह होती है। इन राहों पर चलते चलते 100.1 मेगाहर्ट्ज पर खुद ब खुद हो जाती है। जी हाँ, आइए आज के मनमीत गीत मेरे मनमीत को बनाते हैं कुछ बहुत खास और चुरा लेते हैं इन गीतों के अंदाज से आपका भी दिल। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए आगाज करें आज के गीत मेरे मनमीत का इस गीत के साथ, जो कि रचा बसा है आशा जी और रफी जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीतबद्ध किया था आजी बर्मन जी ने। यादों की बारात फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे, गीत मेरे मनमीत में 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

जी श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये सदाबहार गीत यूं ही आपका मन चुराने आए हैं और चुराते रहेंगे। बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। जी हाँ, कुछ दीवानगियां इस अंदाज में भी बयां होती हैं। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होता है, हर हाल में आगे बढ़ना और हर मुश्किल से टकराना होता है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर जी हाँ, बेहद सदाबहार, बेहद प्यारे गीतों का अंदाज आप सुन रहे हैं। ये अगला गीत हम किसी से कम नहीं फिल्म से आप सुनेंगे। आशा जी और रफी जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज से सजाया है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, और संगीत

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: चली है चोरी।
1: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दोस्तों गीत मेरे मन में, लेकिन फिलहाल आज इसे यहीं समेटती हूं और आपको छोड़े जाती हूं एक बेहद प्यारे से गीत के साथ जो कि है रफी साहब की आवाज में। फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत, तो शुभ रात्रि, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक अच्छी सी नींद लीजिए, लेकिन फिलहाल सुनते जाइए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल को।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं ला रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की कामना में विश्वास करता आया है।

0: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी। मंत्रालय ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत को नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा। अम्स्टरडैम में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज निशिगंधा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा और आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: यूं ही तुम

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आज कुछ ऐसी बातें आपके साथ साझा करते हैं जिन पर बात करना हम भूल जाते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम खुद को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अच्छा करना चाहते हैं, खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं और साथ ही हम अच्छा दिखना भी चाहते हैं। पर अच्छा हम कैसे दिख सकते हैं, ये जो पैमाना है ना, ये हर इंसान अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। कुछ लोग खुद को संवार कर अच्छा दिखना चाहते हैं, कुछ अपने कर्मों को इतना अच्छा करते हैं कि उससे उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में एक ग्रेस आ जाता है जिसके कारण वो अच्छा दिखते हैं। चेहरे की चमक जो होती है ना, वो कुछ सालों की मेहमान होती है, मगर आपके बिहेवियर की, आपके व्यवहार की खूबसूरती उम्र के साथ बढ़ती है। किस नरमी से बात करना है, कैसे बात करना है, ये भी आपके व्यक्तित्व की एक खूबसूरती होती है।

किसी की परेशानी समझ लेना भी एक कला है। और कहते हैं ना कि ऐसा भी देखा गया है कि हर खूबसूरत इंसान आकर्षक नहीं होता, मगर एक अच्छा व्यवहार जो है, अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति आकर्षक भी होता है और वो याद भी रहता है। इसलिए जब भी खुद को देखना होना तो कभी भी सिर्फ आईने में खुद को मत देखिए, यह भी देखिए कि आपके कारण कितने मन हल्के हुए, कितने लोगों के अंदर आपसे मिलने की दोबारा की चाहत जो है वो पैदा हुई, कितनी आंखों में आपने भरोसा जगाया, कितने रिश्तों को आपने प्रेम से बचाए रखा। और रात जब आपको मौका दे तो खुद से आप ये सवाल जरूर करिए, मैं सुंदर दिखती हूँ कि नहीं, ये सवाल नहीं, सुंदर बनती कितनी हूँ ये भी सवाल नहीं, ये कि मैंने कितने मन को सुंदर बना दिया है, ये सवाल खुद से करिए। चेहरा तो वक्त के साथ बदल ही जाता है, चेहरा तो वक्त के साथ बदल ही जाता है, किरदार ही है जो उम्र भर याद आता है, किरदार ही है जो उम्र भर याद आता है। अगला गीत फिल्म वक्त से, आवाज है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब एक ऐसी बात जिस समस्या से हम सभी ग्रस्त हैं। बात जब आती है संबंधों को चुनने की, दोस्त चुनने की, साथी चुनने की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि आपका एक बहुत अच्छा, एक सच्चा साथी कौन है, एक अच्छा दोस्त कौन है, तो शायद अगर आप ईमानदार उत्तर तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो ईमानदार उत्तर नहीं होगा। आप सोचने लगेंगे कि सच्चे साथी की परिभाषा क्या होती है, सच्चे दोस्त की परिभाषा क्या होती है। सच्चा साथी वो नहीं होता जो हर पल आपके आसपास घूमता रहे या आपके आसपास रहे। सच्चा साथी, सच्चा दोस्त वो भी होता है जो दूर होकर भी आपके पास होने का एहसास दिलाए, जिसके सामने आपको किसी भी तरह का कोई अभिनय न करना पड़े। आप जो हैं बिल्कुल उस तरह से उसके सामने जाकर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, सच्चा साथी, सच्चा दोस्त वो है जिसके सामने अगर आपके व्यक्तित्व का कोई सबसे कमजोर पहलू है, वो बताने में किसी तरह का कोई डर ना हो, और साथ ही सफलता साझा करने में आपको कोई हिचक भी ना हो। जहां प्रेम के साथ मित्रता हो, मित्रता के साथ प्रेम हो, ऐसा रिश्ता जो है ना, वो बहुत शोर शराबा नहीं करता। बस धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता दोनों के जीवन को सुंदर बनाता चला जाता है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है साथ होने से भी, वो है सहज होना। जिसके साथ होकर आप सहज महसूस कर सकें, सरल महसूस कर सकें, वही रिश्ता आपका सबसे सच्चा रिश्ता होता है, सबसे सच्चा दोस्त होता है। और प्रेम में सबसे दुर्लभ बात जो होती है ना, वो आकर्षण नहीं होती है, सबसे दुर्लभ बात है भरोसे का होना। और भरोसा मिले तो साधारण से साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी खास हो जाता है। कहते हैं कि साथ ऐसा हो कि दूरी भी पास लगती रहे, साथ ऐसा हो कि दूरी भी पास लगती रहे, दिल की दुनिया में कोई ना कोई आस जगती रहे, दिल की दुनिया में कोई ना कोई आस जगती रहे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं, जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलन।

इस्तेमाल। कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और निशिगंधा का अगला गीत फिल्म बॉबी से, आवाज है शैलेंद्र सिंह की। आइए सुनते हैं ये गीत।

कितनी सुंदर बात है ना कि हमें कभी भी किसी की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी के जीवन में सफलता जो है वो जल्दी मिलती है और किसी की देर से। मगर देर से मिली सफलता का अर्थ जो है वो हार नहीं है। आपको किसी और के जैसा बनने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपने बेहतर रूप तक पहुंच जाना है। किसी भी तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है ये हम नहीं जानते, इसलिए अपने जीवन को दूसरों के दिखते हुए जीवन के अनुसार कभी भी तौलना समझदारी नहीं कही जा सकती। आज हमने अपने कल से एक कदम अगर आगे बढ़ाया तो हम थोड़ा आगे चले और वो हमारी अपनी जीत है। तो इसलिए कहते हैं कि रात को जब भी हम सोने जाए ना, तो सोने से पहले 3 अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को जरूर याद करें। मन को तुलना से नहीं, कृतज्ञता के साथ में सोने दीजिए। दूसरों की राह देखकर खुद को कम न आंक। तेरी मंजिल का रास्ता भी अनोखा है। अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म लव स्टोरी से।

एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि गिला रखा तो दिल जगह घेरता गया, गिला रखा तो दिल में जगह घेरता गया, माफ किया तो रास्ता मेरा साफ हो गया। जनाब, ये जो माफ करने की बात होती है ना, ये अक्सर हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम सुनते रहते हैं कि जब भी किसी ने गलती की तो एक बात सुनाई देती है, माफ करो और आगे बढ़ो। पर ये माफ करना हमेशा दूसरों के लिए नहीं होता। कि अगर हमने माफ करने को अपनी आदत में शामिल किया तो ये हमेशा दूसरों के लिए नहीं है, ये कभी कभी अपने मन को मुक्त करने के लिए भी माफ करना देखा जाता है। जिसने दुख दिया उसके व्यवहार को सही नहीं कह सकते। अगर आपने माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि उसका व्यवहार सही था, बस उसके कारण अपने भीतर की कड़वाहट को हमने जाने दिया। कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत सारा प्यार लेकर आते हैं और कुछ लोग बहुत सारी सीख लेकर के आते हैं। दोनों की ही भूमिका बिल्कुल अलग होती है। और साथ ही एक बात और भी यहां पर होती है कि ये जो दो लोग आते हैं जीवन में, इनके साथ एक तीसरे तरह की भी लोग आते हैं, जहां जाकर हम कहते हैं कि हर रिश्ता उम्र भर साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें खुद की कीमत समझाने के लिए भी हमारे जीवन में आते हैं, इसलिए बीते हुए लोगों को याद करते समय अपने वर्तमान के साथ अन्याय मत करिए। अपने जीवन को जीने का, अपने जीवन में आगे बढ़ने का हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, और जो इसे याद करके आगे बढ़ते हैं ना, सफलता उनके ही कदम को चूमती है। इसलिए कुछ भी करिए, खुद को कभी भूलने मत दीजिए। रात आती है हमें याद दिलाने के लिए कि हमें खुद के साथ कितना वक्त खुद के लिए बिताना है। इसलिए माफ करना आदत में जरूर हो, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन पर इस बोझ के साथ रहें कि हमने माफ करके कहीं को गलती तो नहीं कर दी। जनाब, माफ करना इसलिए कि हम अपने मन के अंदर किसी कड़वाहट को जगह नहीं दे सकते। माफ करना बोझ बनकर हमारे दिल पर कभी घर नहीं बना सकता। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और वक्त आ चला है कि हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है यसुदास की और फिल्म का नाम है टूटे खिलौने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से एक हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय महिला पहलवान काजल डोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल ई मुकाबले में भारत को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा है। अम्स्टलफेन में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आंखों बंद कलियों की तरह फूल कहते हैं सब लोग तुम्हें तो महका करो, फूल कहते हैं सब लोग तुम्हें तो महका करो। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने की आज शुरुआत करते हैं जूली फिल्म के इस गीत के साथ और फिर करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। वक्त नदियों को उछाले उड़ाए पर्वत, वक्त नदियों को उछाले कि उड़ाए पर्वत, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी, उम्र का काम गुजरना है गुजर जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। अगला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है सागर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है।

इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने का अगला गीत फिल्म दोस्ती से आप सभी के लिए। आइए सुनते हैं ये गीत।

ना कोई गुलाब रखे, मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे, बस नाम तेरा कोई और पाक जवाब रखे। मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है, मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है, वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे, वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे। जब जब समय की धूप हमारे करीब आए, जब जब समय की धूप हमारे करीब आए, विश्वास अपनी चाह का गहरा मिसाल रखे, विश्वास अपनी चाह का गहरा मिसाल रखे। मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे। और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है आएगा आने वाला।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में हम कर रहे हैं आपके साथ बहुत सारी बातें।

रात ने धीमे से चांद से कहा, रात ने धीमे से चांद से कहा, तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी क्यों है? चांद मुस्कुराया, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता। रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? चांद ने उत्तर दिया, ये उन लफ्जों की है जो होठों तक आकर लौट जाते हैं। रात ठहरी, क्या कोई सुनता भी है इन्हें? चांद झुका, हाँ, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं। रात ने आंचल फैलाया, तो आज मैं इन्हें समेट लूं? चांद ने सिर हिलाया, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे। रात बोली, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? चांद ने कहा, क्योंकि शोर में सच्चाई नहीं होती, क्योंकि शोर में सच्चाई नहीं होती।

0: फिल्म का नाम है तीन देवियां, आवाज है किशोर कुमार की। साथ ही हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। फिलहाल छोड़े जाते हैं आपको जिस गीत के साथ। फिल्म का नाम है तीन देवियां, हम आपको बता चुके हैं, आवाज है किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

गुमा सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में पर्यटकों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ढाका के बंग भवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसल कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बांग्लादेश में संसद में मतदान के माध्यम से अंतिम राष्ट्रपति चुनाव 8 अक्टूबर 1991 को हुआ था। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश फथिराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ नीरज को सिर्फ 9 सेंटीमीटर के अंतर से पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है गोलमाल।

रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, चांद ने उसमें हल्की सी चांदी घोल दी, और तन्हाई ने दोनों के बीच बैठकर अनकहे भावों की लकीरें खींच दी। कहीं कोई शब्द नहीं था, पर सब कुछ स्पष्ट था, जैसे कोई पुराना रिश्ता बिना आवाज के फिर से जी उठा हो, और समय बस किनारे बैठा देखता रह गया कि गहराई हमेशा शोर नहीं करती, कि गहराई हमेशा शोर नहीं करती। रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, चांद ने उसमें हल्की सी चांदी घोल दी।

बात अगर प्रेम की करें तो प्रेम कोई उच्चारण नहीं, एक दीर्घ श्वास है जो भीतर उतरकर समय को भी विराम देता है। जीवन की धूल में जब पांव थकने लगते हैं, वही प्रेम है जो थाम कर रास्ता नया देता है। यह कोई उत्सव नहीं जो सजा कर जी लिया जाए, यह तो वह ताप है जिसमें मन स्वयं को गढ़ता है, कभी आंसू की तरह, कभी अनकही हंसी की तरह। यह हर रूप में आकर हमें थोड़ा और मनुष्य करता है। जीवन की परतों में छिपा एक मौन सा स्पंदन, प्रेम वही है जो बिना मांगे भी साथ रहता है। प्रेम वही है जो बिना मांगे भी साथ रहता है। अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म का नाम है साजन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन और आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मंजिल बना जाता है। जीवन की कठोर धुनों के बीच प्रेम ही वह स्वर है जो गीत रचता जाता है, जो गीत रचता जाता है।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है मासूम, आवाज है आरती मुखर्जी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर

लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। हिमाचल प्रदेश के 36 सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 के बीच करीब 419 करोड़ 88 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में बताया कि राशि मंदिरों के रखरखाव, साफ सफाई, धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों और पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की जाती है। यूक्रेन के मध्य हिस्से के क्रिवी री शहर में रूसी ड्रोन हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 130 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार घायलों में 23 बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाकर किया गया। क्रिवी री यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का गृह नगर है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर भाला फेंककर तीसरे स्थान हासिल किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पूल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की टूर्नामेंट में पहली हार है। नीदरलैंड्स के दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। युब्बी यानसेन और फ्रेडरिके मार्टला ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुमसा प्रेम, तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुमसा प्रेम, आता भी किसको है ऐसा जादू वादू करना, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है तन और महक उठती है मन की मौलश्री। सादिश प्लव 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 3:12 और 3 सेकेंड। हमराही प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

कभी कभी ना दोस्ती इतनी नजदीक आ जाती है कि कब वो प्यार में बदल जाती है हमें खुद भी पता नहीं चलता। उसका एहसास हमें तब होता है जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, फिर हमें समझ में आता है कि अरे हमारे दिल को तो उसकी आदत पड़ गई है, अब उसे तलाशा कहाँ जाए। कभी कभी लगता है कि कुछ रिश्ते शुरुआत से ही अपना अंजाम लिखवा कर आते हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते, और पहचान भी लेते हैं तो उसे वो जगह नहीं दे पाते जितनी जगह वो डिजर्व करते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: आपको पता है इश्क में ऐसा ही होता है, दुनिया की सारी रस्में टूट जाती हैं, सारी कस्में टूट जाती हैं, साथ रहता है तो बस दो लोगों का साथ रहता है, एक पूरी दुनिया होती है दो लोगों के साथ में, जैसे अभी आपका और हमारा साथ है, इस साथ में भी कहीं ना कहीं एक अपनी दुनिया है। इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

अगर दिल की बात को कहना इस गाने की तरह आसान होता तो ये जिंदगी कितनी आसान हो जाती। लेकिन सच्चाई यही है कि हम दोस्तों से बात कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन जिसे हमें अपने दिल की बात बतानी है, जिसके लिए हमने सपने सजोए हैं, उससे ये बात कहना कितना मुश्किल होता है। जब भी ये बात कहने की बात आती है कि हम आपको चाहते हैं, ये कहना वाकई बहुत मुश्किल होता है। तब ऐसा लगता है कि इस संसार के जितने भी शब्द हैं, जितनी भी भाषा है, वो गायब हो गई है या ख़त्म हो गई है। बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी लगता है कि इस गाने की तरह हिम्मत करके, थोड़ी सी साथ, थोड़ा सा साहस करके, हिम्मत जुटा के कह दिया जाए तो शायद ज़िंदगी की तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। अगला गीत अभी के लिए

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री।

साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

हर लफ्ज के तमाम मुआनी में हम भी थे, हर लफ्ज के तमाम मुआनी में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। उठती है एक कसक तेरी तस्वीरें देखकर, उठती है एक कसक तेरी तस्वीरें देखकर, ताजा में हम नहीं हैं, पुरानी में हम भी थे। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 104.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 3:45 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही। अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

चोरी चोरी से? ना ना, हम तो पूरे ऐलान के साथ आपके साथ हैं, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता ही ऐसा है जहां हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। अगला गीत आप ही के लिए।

अभी जब ये गाना मैं सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सपने बहुत लंबे इंतज़ार के बाद पूरे होते हैं, तो उन सपनों के पूरे होने की जो खुशी होती है उसे बयां करना बहुत मुश्किल होता है। उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते, चाहे वो सालों के इंतज़ार के बाद हमने अपने पसंद की कोई गाड़ी ली हो, कोई घर लिया हो, हमें अपने पसंद की कोई जॉब मिली हो, या फिर वो इंसान हमने पाया हो जिसकी हम बहुत दिनों से मुराद कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे कि काश ये इंसान हमें मिल जाए। और वो इंसान जब हमें मिलता है, वो प्यार हमें मिलता है, तो आसपास की जो पूरी दुनिया होती है वो और ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लगने लगती है। और ये इस दुनिया में हमारा यकीन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो अगर आप प्यार में हैं तो ये गीत सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए।

हमराही में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 4 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 4:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठक की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। अमेरिका के अलास्का में घने कोहरे के बीच एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पायलट और 6 यात्री शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज 88.14 मीटर की थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने तीसरा स्थान हासिल किया। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की यह टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, the Prime Minister said the International Monetary Fund forecast that India will remain the world's fastest growing major economy. He said, India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and that reforms are a commitment of his government. Mr. Modi said, India has moved away from a production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they would beg from the government for even basic needs. Talking about the seven powers representing seven key streams, which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that these seven sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus.
1: 15 August ko maine Lal Kile se Saptadhara ki सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो. गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है.
2: The Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, and adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal yesterday after inaugurating a six-day awareness exhibition on the Bharatiya Nyaya Sanhita at Kavakhali Ground. Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat emphasized the need for more effective use of artificial intelligence in the tourism sector. Speaking to the media yesterday in Jaipur after attending the BRICS Tourism Ministers meeting, Mr. Shekhawat noted that India has seen a threefold increase in tourist numbers over the last 10 years. Meanwhile, India will host the BRICS Youth Ministers meeting today and the BRICS Sports Ministers meeting tomorrow in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya will chair both the meetings, with Minister of State Raksha Khadse also attending. The Maharashtra government and Germany's Hess state have signed a memorandum of understanding to strengthen cooperation in investment, innovation, employment and skill development. The agreement was signed in Mumbai by Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Hess President Boris Rhein. It covers industry, IT, skilled workforce and cross-border mobility with opportunities in pharmaceuticals, healthcare, automobiles, engineering, AI and the digital economy. Chief Minister Fadnavis said Hess could be Maharashtra's gateway to Germany and European markets, while Maharashtra could serve as Hess's gateway to India and the Indo-Pacific. In Ukraine, 15 people were killed and 130 injured after Russian drones struck a shopping mall in Kryvyi Rih, authorities said. Kryvyi Rih is the hometown of President Volodymyr Zelensky. The local administration said 23 children were among the injured and warned that the death toll could rise. India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rains in East Madhya Pradesh today. Heavy rain is also expected across Assam, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till Monday. Similar conditions are likely in Delhi, Punjab, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Odisha, Uttarakhand and parts of the Himalayan region today. The IMD has also forecast squally weather with winds gusting up to 60 km per hour along the North Andhra Pradesh coast and adjoining parts of the Bay of Bengal. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सौदेश प्लव एक मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 4:11 और 7 सेकंड। अरुणिमा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अरुणिमा एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम जिंदगी की उलझनों से निकलकर उम्मीद की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने कुछ गानों के साथ, अपनी कुछ बातों के साथ। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

जिंदगी की असली सच्चाई तो यही है कि हार के बाद ही जीत मिलती है। अब जिंदगी है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन इन मुश्किलों में हमें बहुत हिम्मत रखने की, बहुत हौसला बनाए रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया तो शायद हम जिंदगी हार जाएंगे। लेकिन जब मुश्किल दौर हो तो अपने आप से प्यार थोड़ा ज़्यादा करना, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो अपने ऊपर बीत रहे असफलताओं को, संघर्ष को जानते हैं। अब वक्त से बड़ा मित्र और कोई भी नहीं होता, तो अपने साथ हमेशा बहुत ज़्यादा पोलाइट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके संघर्ष सिर्फ आपके हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

इस गाने की सबसे खूबसूरत लाइन पता है मुझे कौन सी लगती है? वो वाली जब रानी मुखर्जी कहती है कि चांद का टीका लगा के, मत्थे लगा के रात दिन तारों में जीना बिना इजी नहीं. मतलब गुलजार साहब की लेखनी ही ऐसा लिख सकती है कि कंगाली के दिनों में जिंदगी को चुनौती देने की जो कोशिश है वो सच में जिंदगी को फिर से एक गहरी सोच के साथ, एक गहरे कमबैक के साथ साबित करने पर मजबूर कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है. और जिंदगी का रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए. जब आपके दिन सही नहीं है या जब चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हो, तब भी जो जोश है वो इस गाने की तरह ही होना चाहिए. क्या आपने कभी जिंदगी के अंदर की जो तेज धड़कन है उसको महसूस किया है? अगर किया है तो फिर आपसे बड़ा विजेता तो कोई और नहीं है. अगर जिंदगी आगे बढ़ने की या अपनी मंजिल को पाने की सीटी बजा रही है तो फिर आपको आपका आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. अगला गीत आप ही के लिए.

वाकई जब दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, फिर कोई भी चुनौती हमें ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए उस छोटी सी चिड़िया का जो सुबह सुबह जल्दी बिना किसी अलार्म के उठती है, और तुलना कीजिए अपने आप से कि एक छोटी सी चिड़िया जब उठ सकती है, जो परिंदे उठ सकते हैं, तो फिर हम तो वो हैं जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए हर रोज़। हम हर रोज़ कोशिश करना भूल जाते हैं। अगर आज आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ज़िंदगी से आपको कुछ और उम्मीदें हैं जो शायद ज़िंदगी से बड़ा सोचते हैं कि उन्हें वो मिले, और आज आपका वक्त वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो अपनी कोशिश को कभी नहीं रोकना, क्योंकि ज़िंदगी स्वर्ण अक्षरों में एक ना एक दिन लिखी जरूर जाएगी, क्योंकि ईश्वर हर किसी को उसके हिस्से का आसमान देता जरूर है, चाहे उसमें थोड़ा वक्त लग जाए। अगला गीत अभी के लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 4:47 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम जिंदगी की उलझनों से निकलकर उम्मीद की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ बातों के साथ, कुछ गानों के साथ। तो ये अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

पूरे दिन की एनर्जी ऐसी भले ना हो लेकिन सुबह की शुरुआत में एनर्जी इस गाने की तरह होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं, और ये जो मेरी आवाज में आपको एनर्जी सुनाई दे रही है ना, इसका जादू भी आप ही की वजह से है। क्योंकि जब जब जब ऐसा लगता है कि आप सुन रहे हैं हमें, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें तो लगता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अगर आज आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है या आगे कैसे बढ़ें, तो आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी है कि जिंदगी में ये करना है वो करना है, बस एक कदम आगे बढ़ाना है। एक कदम आगे बढ़ाने से ये होगा कि आपको मंजिल भले ही नजर ना आए लेकिन रास्ते साफ जरूर दिखाई देने लगेंगे।

वाकई जिंदगी हंसने गाने के लिए है और इसे ऐसे ही बीतना चाहिए। अरुणिमा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 5:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के जरिए उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और देशों के बीच अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की एक बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति और तेज 5G विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि PM कुसुम योजना से किसानों को बिजली की लागत कम करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए जीवन आसान बनाने और कारोबार को सुगम बनाने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की प्रगति से वैश्विक स्थिरता भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप्स संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। इससे पहले भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए पूरा किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवा

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 5:11 और 10 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम भोर सुहानी। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भोर सुहानी ये वो समय है जब हमारा मन सबसे ज़्यादा शांत होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो हम खुद के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और जब हम खुद के नज़दीक होते हैं तो फिर ईश्वर तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

बोर की सबसे बड़ी सीख यही है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जब हम मन से सच्चे हो जाते हैं तो भक्ति अपने आप सुंदरता बन जाती है। सावन का महीना है, यानी शिव का महीना है। जब सावन और शिव साथ साथ चलते हैं तो मन स्वतः अलौकिक भाव से भर जाता है।

इस भजन को सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो स्वयं उस दिव्य शिव विवाह की झांकी के साक्षी बन गए हों हम सभी। यही तो हमारे महादेव की महिमा है। शिव भक्ति हमें सिखाती है कि प्रभु के द्वार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सुंदर या कुरूप नहीं होता। जो जैसा भी है, सच्चा भाव लेकर अगर शिव के चरणों में आ जाए तो भोलेनाथ उसे सहर्ष अपने द्वार पर जगह अवश्य देते हैं।